0: इले हम याद नहीं करना अपनी वी भूमि ते। उत्तराखंड में आजकल कई प्रकार का पर्यटक आना छन, दूर दूर बिटिन पर्यटक आंदन। जख मा हमारा कई पर्यटक स्थल छन, जय मा मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, जोशी मठ, जिम कॉर्बेट जो छो पार्क छ, नैनीताल, देहरादून, रामनगर, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, कई केदारनाथ, ये ना वो छन जो मा आजकल हिमपात को भी दर्शन वे सकदन। हर जगह जगह का जो पर्यटक आना छ तकड़ी भी मुलाकात हो सकती है। तो समय मिलू तो भाई अगर आप छुट्टियों में छन तो अपने बच्चों लेते हैं जरूर वे स्थान पर पहुंचो। ले वो तो सुना पहली हकु गीत।
1: पुराणों का हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची तब सैरी मन ख्यात का वास्ता ई धरा को भी निर्माण करेंगे। तब दिप्तों ने ब्रह्मा जी में बोली कि हे भगवान, आपन सरी मन ख्यात खुनता पृथ्वी लोग बने आली, परंतु हमारा वास्ता भी ई धरती लोग में कोई स्थान दयावा। तब ब्रह्मा जी ने बोली कि जम्बू द्वीप में भारत वर्ष नौ को देश होलो, जय मां उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजला। और वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि का नाम से जने जाती। और ये सोची सोची की कि ई भूमि में हमन जन्म ले, हम धन धन में जाना। और गर्व से अब हुई हमारा मुख बटे निकल जान दो कि हम उत्तराखंडी छा।

क्रिकेट जगत की खबरों बिटेन भारत में आईपीएल का मैच चलना छन, जैमा हर टीम कुछ ना कुछ नई उपलब्धि लीके आनी छ, नया खिलाड़ी नया सितारा देखने का मिलना छन। भारत में क्रिकेट प्रतिभा की कोई कमी नहीं छ, नया नया 18-20 साल का बच्चा बड़ा जुनून का साथ बड़ा खतरनाक तरीके का साथ आना छन। आजकल तो 250 रन तो इन वेगन मैचों में कि जन एक टाइम 60-70 ओवर में भी इवन क्रिकेट मैच का जो टेस्ट मैच को फॉर्मेट था जो 5-5 दिन तक चलता हो कभी कभी वे में भी इतना रन देखना करने मिल जान। पर आजकल नया नया बच्चा 15 साल को जन एक वैभव सूर्यवंशी 15 साल को बच्चा 100-100 रन यन च मानो कि 20-30 गेंद 50 रन तो के करीब वेन 3-4 पारियन खेले लेन कि जैमा वेन 15 बॉलों पर ही 50 रन बनाए दिन। तो अब नई नई उपलब्धि देखने के मिलने छन और टॉप रैंकिंग में अभी राजस्थान रॉयल अभी 6 छ टॉप 4 में छ। एच की जो 4 टीम छन वे में पंजाब बेंगलुरु और राजस्थान लखनऊ यानी टीम जो छन चेन्नई भी धीरे धीरे वो बनी छ। तो 5-6 टीम अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन करने छन। तो फाइनल तक नज़र बना के रखला और आपने भी जरूर अपडेट देना रहला कि मैच में के होना छ। अभी सुनता एक और पाड़ी गीत।

आप सुनना चन आकाशवाणी एडिलेड 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम उत्तराखंडी कार्यक्रम मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी। ये कार्यक्रम ते आप ऑनलाइन भी सुनना चन www.5bbi.com.au।

ये कार्यक्रम आप सुनना छन आकाशवाणी एडलेट पर मेरी यानी विनोद बिस्की दगड़ी। दगड़ियों आप समय होनु छ आपसे इजाजत लेने को, अगला कार्यक्रम में फिर मुलाकात होली। तब तक मैं ते आज्ञा दिया विनोद बिस्ते नमस्कार प्रणाम पहला।